आया शमशताहं कोपनानिश्मलाह की केतम तमकते मवीकल हमाया आया चमाय वो चमा की आय चमाय वो चमल मुखी नौ कृष्ण ना कमी।